0: You're listening to Culture of Punjab. We are changing Canada one person at a time.
1: हम लोग अक्सर खुद को बहुत सुपीरियर मानते हैं और दया की नज़र से देखते हैं स्पेशल चिल्ड्रेन और मेंटली चैलेंज्ड बच्चों को, पर कहीं ना कहीं वो लोग वो बच्चे हमसे बहुत आगे हैं ह्यूमैनिटी में, इक्वालिटी में। पता है कैसे? क्योंकि हमारे पास ब्रेन है जो हर काम में लॉजिक ढूंढता है, जो हमारे दिल को सोचने की इजाज़त नहीं देता।

कल्चर ऑफ पंजाब आपका डेली एंटरटेनमेंट डोज। अच्छा विजुलाइज करें, सन 2006 की ये बात है, 8 बच्चे एक ट्रैक पर एक लाइन में खड़े थे, भागने के लिए बिल्कुल तैयार। रेडी स्टेडी एंड गो, टॉय पिस्टल की साउंड हुई और आठों लड़कियां भाग पड़ी। अभी 10-15 कदम की दौड़ी होंगी कि उनमें से सबसे जो छोटी लड़की थी वो गिर पड़ी, चोट लगी, दर्द की वजह से रोने लगी। बाकी सातों लड़कियां रुक गई, मुड़कर देखा और उस रोती हुई छोटी सी लड़की की तरफ वापस भागी। सातों ने उसे प्यार किया, चुप कराया और फिर एक दूसरे का हाथ थामकर इकट्ठी भागी और पहुंच गई विनिंग पोस्ट पर एक साथ। ऑफिशियल्स हैरान थे, हजारों स्पेक्टेटर्स हैरान थे, करीबन सबकी आंखें नम थी एंड विद दैट केम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम। अब बताएं, है कोई शक कि है ये हम सबसे स्मार्ट और प्योर हर एंगल हर एस्पेक्ट से?

0: ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਟਕਲੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਟਪਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
1: ਸੁਣਦੇ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਤੇ
2: ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ।
3: अच्छा सभी सोच कर देखिए कि आज से सालों बाद जब वक्त हाथ से निकल जाएगा तो श्योर है कि आपके पास एक लिस्ट तैयार होगी उन कामों की, उन वर्क्स की जो इन बीते 20 सालों में आप कर सकते थे पर कर नहीं पाए। इसलिए आए तो कैन जस्ट एडवाइस कि इतनी सेफ गेम खेलनी छोड़ दें एंड जस्ट एक्सप्लोर, ड्रीम एंड डिस्कवर, एम हाई, शूट फॉर द मून। नहीं भी हाथ में आया तो डजंट मैटर, तारे तो कहीं नहीं गए ना।

0: ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਟਕਲੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਟਪਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
1: ਇਹੋ ਸੁਣਦੇ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਤੇ
2: ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ।
3: रात को चांद तारों से बातें मत किया करो, कोई तबीयत के बारे में पूछे तो मौसम के बारे में मत बताया करो, वरना लोग कहेंगे कि तुम बहुत उदास हो। जी हाँ, ये सिम्टम्स यकीनन उदासी के हैं, पर आपको बता दूं, ये तो मैंने सिर्फ कहने को ही कहा था, मैं बिल्कुल उदास नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि आपसे बातचीत कर रही हूँ। चलिए खुशी में इजाफा करते हैं और लिए चलती हूँ आपको एक और ट्रैक की तरफ। आप सुनते रहे, जुड़े रहे
4: प्रिया की जुदाई में।

0: कल्चर ऑफ पंजाब से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया।
1: अच्छा, अगर ये मान भी लें कि कुछ रंग हमारी किस्मत खुद बन जाते हैं, तो कहीं न कहीं एक सच ये भी है कि कुछ रंग हमें खुद चुराने पड़ते हैं, मेहनत, डिटर्मिनेशन और कॉन्फिडेंस से। चलें फिर क्यों न आज ये वादा करें कि हम जिंदगी के सारे खूबसूरत रंग चुरा लेंगे। कामयाब ना भी हो पाए तो कोई गम नहीं, कम से कम कोशिश जरूर करेंगे। फिलहाल तो हमारी कोशिश ये है कि अच्छी बातों के साथ साथ आप तक बेहतरीन म्यूजिक भी पहुंचाया जाए आपके अपने शो कल्चर ऑफ पंजाब में, विच इज ब्रॉट टू यू बाय देवदत्ता।

0: You're listening to Culture of Punjab. We are changing Canada one person at a time.
1: ਆ ਕੁੜੀਏ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦੇਖੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸੁਣਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ।
2: ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ।
3: ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ।
4: अच्छा, आपकी सोच, आपकी पर्सनालिटी ने खुद ही बता देना है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, कितने पॉजिटिव हैं। मैंने देखा है कि जिन लोगों में खुद लो सेल्फ एस्टीम है ना, दे स्टार्ट जजिंग द अदर पर्सन विद हिज पोजेशंस एंड नॉट बाय हु ही और शी एक्चुअली इज। ऐसे लोग बस यही नोट करते रहते हैं कि आप कौन सी कार ड्राइव करते हैं, कपड़े और ज्वेलरी कैसे डालते हैं, कितने बड़े मकान में रहते हो। डिजाइनर लेबल्स इनके लिए स्टेटस सिंबल हैं, और एक्चुअली मैं तो ये फील करती हूँ कि इनसे अगर ये सब चीजें ले लें तो दिल डाई ऑफ शेम, और वो इसलिए बिकॉज इनकी जिंदगी घूमती ही सारी इन मटीरियलिस्टिक चीजों के इर्द गिर्द है।

0: ऑफ पंजाब दे चुटकले कहानियां ते साडियां चटपटियां गल्लां
1: आहो सुनदे यार रोज रेडियो ते
2: सुनो साडे YouTube चैनल कल्चर ऑफ पंजाब ते।
3: एक बार ये सोचकर बताएं कि ज्यादा बेटर फीलिंग क्या है, कि लोग ये याद रखें कि आपकी पहनी हुई ज्वेलरी बहुत महंगी थी, आपके आउटफिट्स बेहद कीमती हैं और आप बड़े बड़े डिजाइनर्स महंगे डिजाइनर्स की क्रिएटिविटी का नतीजा पहने हुए, या फिर ये कि आप खुद एज एन इंडिविजुअल बहुत कॉन्फिडेंट बेहद ग्रेसफुल हैं और लोगों की नजर चाह कर भी आपकी ड्रेस या ज्वेलरी पर ना जाकर आप पर टिकी रहती है। How very smartly dressed. मेरे ख्याल से इस कॉम्प्लीमेंट से तो बेटर कॉम्प्लीमेंट ये है कि how very confident and intelligent.

0: कल्चर ऑफ पंजाब आपका डेली एंटरटेनमेंट डोज।
1: अक्सर हम लोग इंक्रीज्ड वर्कलोड की बहुत शिकायत करते हैं। किसी से भी पूछ लें कि आप मिलते ही नहीं आजकल, तो सबसे कॉमन आंसर ये है कि टाइम ही नहीं मिलता। असल में काम नहीं बढ़ा, हम लोग अनऑर्गेनाइज ज्यादा हो गए हैं। अच्छा, आपको पता है कि एक हनी बी 2 मिलियन फ्लावर्स को विजिट करने के बाद महज 500 ग्राम शहद इकट्ठा कर पाती है। तो जरा कंपेयर करें, हमारा वर्कलोड तो कुछ भी नहीं ना उसके मुकाबले में, फिर शिकायत क्यों इतनी काम से, लाइफ से। बहरहाल सब शिकायतों को साइड पर रख, एंजॉय करें ये अगला ट्रैक कल्चर ऑफ पंजाब में प्रीत के साथ।